0: मुबारक हो, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन।
1: अरे भाई बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई।
2: दोनों की जोड़ी।
1: अरे यार ये भी है, ये
2: भी है, ये भी है, ये भी
1: है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये
2: भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये लगा दो ना बेटे।
1: अरे लगाना यार।
0: लगा
1: अरे लगाया
3: लगा
1: लगाया
3: लगाना
1: लगा
3: भैया।